0: आप सुन रहे हैं बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
1: कोई भी रिश्ता जब नया होता है ना, एक्साइटिंग होता है। क्यों नया होता है?
2: थ्री हार्ट्स वन फ्रेंडशिप वन अनफॉरगेटेबल जर्नी। मैडॉक फिल्म्स एंड लव फिल्म्स प्रेजेंट कॉकटेल 2 Starring Shahid Kapoor, Kriti Sanon, Rashmika Mandanna. Directed by Homi Adijania. Releasing on June 19th all across the GCC in a cinema near you. Distributed by Marudhar. Powered by Big 106.2.
0: The Big Mix. Weekdays 10 a.m. to 2 p.m. Only on Big 106.2. Brought to you by InsuranceMarket.ae. Millennials Unite! Your filmy flashback has officially begun. This is the Big Millennial Weekender, only on Big 106.2, the beat of Bollywood.

सेट अ रिंगटोन टू क्या मुझे प्यार है. You're in the right place. This is the Big Millennial Weekender, only on Big 106.2, the beat of Bollywood. Big.

0: रिलैक्स।
1: तुम्हें देखता हूँ तो लगता है कोई ऐसा भी मेरे पास तो है, अरे जिसको मेरी तन्हाई का एहसास तो है।

106.2 The Beat of Bollywood. आप सुन रहे हैं बिग 106.2 The Beat of Bollywood.

सुना था यहाँ आदमी पूरी जिंदगी अपनी किस्मत स्लो ट्रैक से फास्ट ट्रैक लाने में निकाल देता है, पर 2.5 घंटे में मेरी किस्मत ऐसे स्लो ट्रैक से फास्ट ट्रैक पर आ जाएगी, ये मैंने कभी सोचा नहीं था। सजा मजा बन जाएगी।

0: होता है अच्छे के लिए होता है। सही कहते हैं।
1: Rewind your heart. Rewind your weekend. Let the 2000s take over. This is the Big Millennial Weekender. Only on Big 106.2. The Beat of Bollywood.

0: तो पहले भवरे जैसे पास पास मंडरा है, है। फिर बिजी हूँ ये कहकर तुमको वो
1: टक्का
0: समझा करो डार्लिंग, आज बहुत काम
1: मेरी
0: है
1: भी तो सुनो।
0: दूर हुआ तो क्या, दिल में तुम्हारा नाम है। जिस चेहरे पर मरते हैं वो बोरिंग हो
1: जाए,
0: कुछ ही दिन में नजरें इनकी इधर उधर
1: मंडरा।
0: सिर्फ प्यार से जिंदगी नहीं चलती,
1: तुम
0: इंटीरियर डेकोरेशन का कोर्स क्यों नहीं करती?
2: Y2K hits, indie gems, Bollywood gold, your kind of playlist. This is the Big Millennial Weekender, only on 106.2, the beat.

0: The Big Weekender. Hold tight for 4 hours of the biggest Bollywood hits.
1: All weekend long.
0: Big 106.2. The beat of Bollywood.
2: Go!
3: Good thing you upgraded your TV. Feels like the stadium.
4: Had to. World Cup's close. Got 1,000 dirhams off on TV and save 25% on soundbar. You can also save up to 200 dirhams with ADIB covered cards.
3: Football fans, bring the game home. Shop at Sheriff DG and win exciting gifts. TNC apply.
5: कोई भी रिश्ता जब नया होता है ना एक्साइटिंग होता है क्योंकि वो नया होता है
6: थ्री हार्ट्स वन फ्रेंडशिप वन अनफॉरगेटेबल जर्नी मैडॉक फिल्म्स एंड लव फिल्म्स प्रेजेंट कॉकटेल 2 स्टारिंग शाहिब कपूर कृति सैनन रश्मिका मंदना डायरेक्टेड बाय होमी अतिजानिया रिलीजिंग ऑन जून 19th ऑल अक्रॉस द GCC इन अ सिनेमा नियर यू Distributed by Marudhar. Powered by Big 106.2. The Big Mix. Weekdays 10 a.m. to 2 p.m. Only on Big 106.2. Brought to you by InsuranceMarket.ae. Big 106.2. Big 106.2. The beat of Bollywood.

0: आप सुन रहे हैं बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
1: थिंक कार रेंटल्स आर एक्सपेंसिव? थिंक अगेन, बिकॉज राइट नाउ द मोस्ट अफोर्डेबल मंथली कार रेंटल इन द UAE इज हियर फॉर जस्ट 899 dirhams. यस, 899 dirhams अ मंथ. Search selfdrive.ae or download the app now. Because when the monthly car rental price is this affordable, you don't wait. Selfdrive.ae. Your car

0: Okay, now I would like to introduce you to my very good friend, an amazing guy, and a super cool singer, Siddharth Mahadevan, on stage, please.
1: Thank you, thank you.
2: सुन रहे हैं बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.
3: थिंक कार रेंटल्स आर एक्सपेंसिव, थिंक अगेन, बिकॉज राइट नाउ द मोस्ट अफोर्डेबल मंथली कार रेंटल इन द यूएई इज हियर फॉर जस्ट 899 dirhams. यस, 899 dirhams अ मंथ. Search selfdrive.ae or download the app now. Because when the monthly car rental price is this affordable, you don't wait. Selfdrive.ae.

Big 106.2, the beat of Bollywood. आप सुन रहे हैं Big 106.2, the beat of Bollywood.